0: ठाकुर जी प्रेम जैसी सचानी मराहे रुको पान एक काजन मेरा
1: Sometimes it's very true. Kilala wa tu mukasi. Kibira tu achi kilala.